0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
4: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
5: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
6: Allah de phere!
7: Hanji hanji, yoy hanji hanji.
8: Hanji radio.
9: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
10: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
9: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
10: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल to all the radio हांजी listeners.

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ,
5: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ।
4: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ, ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ।
6: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
7: इस जन्म लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
8: फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, कमिंग टू सिनेमाज ऑन मई 22nd।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यू आर लिसनिंग
4: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents चांद मेरा दिल। Watch Ananya Pandey and Lakshya in चांद मेरा दिल, coming to cinemas on May 22nd.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: फुलकारियों ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: We'll be right back.

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

जी ऑफ संक कॉस्ट पब्लिश किया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन डिसीजन प्रोसेसिस वॉल्यूम 35 पन्ना नंबर 124-140 ओहायो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये उपर बाद चो भी काफ़ी काम होया इनू होर विस्थार च रिचर्ड थैलर नाम के एक इकोनोमिस्ट ने उन्होंने ये उपर बिहेवियरल अपनी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की किताब के अंदर जो ये बारे गलबात की इनू होर थोड़ा विस्थार नाल जो वो सोचते सके वो बारे गल की है ही हैज़ ऑलसो वन नोबल प्राइज़ ऑलसो फॉर द सेम उस तो बाद स्ट्रॉ एंड रॉस 1989 च अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इन एसकलेशन सिचुएशन थैलर जिन्हों की आप गल की टूवर्ड अ पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस 1980 ते कानेमन एंड टवर्सकी लॉर्ड्स लॉस अवर्जन रिसर्च जिहड़ा इहदे नाल ही जुड़िया होया कंसैप्ट है वह भी इहदे तो ही निकल के आया सो इट्स अ वेरी साइंस बैक्ड थिंग जे थानू लगता ना कि ये थानू कि तुसी अपने आप नू रोक ही नहीं पाने हो कि तुसी इस तरह क्यों कर रहे हो थानू लगता कि यार मैं हर वारी अपने मन नू मनाना कि यार हुन अज मैं बेइज्जत हो गया इस महफिल के अंदर या फिर मैं अज इस चीज़ के उपर पैसे खर्च करते हैं मैं नैक्सट टाइम नहीं करने या फिर इस महफिल च मैं दोबारा वापस नहीं आना या फिर इस रिश्ते नू मैं अगे नहीं बधाना फिर भी तुसी अपने नू रोक नहीं पाने हो तो देर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट तो आप हुन होर इहदे बारे अगे जाके गलबात करते हैं हुन जी इहदे अंदर आपां नैक्सट पॉइंट के अंदर गलबात यह करांगे कि आपां इहदे किहड़े किहड़े एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं गिवन कि इस सिचुएशन के अंदर इस तरह का की है जो अपन नॉर्मल लाइफ के अंदर वेखते हैं ना जैसे रिलेशनशिप के अंदर अगेन उही ना लैट सपोज कभी कोई बंदा कह दिया कि यार 5 साल हो गए मैनू इस दोस्ती नो कायम रखद्या होया मैं जद आया यही मेरे यार मित्र ने यही मेरे हाउसमेट रहे है हाँ ना हुण भावें उन्हां दा मेरे नाल वर्तन का तरीका बदल गया मैनू दिसदा पर चलो कोई गल नहीं मैं लगा रहना है ना करीयर के अंदर आप लास्ट टाइम भी गल की सी कि आप क्योंकि एक चीज़ पढ़ी होंगी है एक सैक्शन पढ़िया होंगे क्योंकि मैं कमर्स की है या फिर क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की है मैं उस पढ़ाई के अकॉर्डिंगली ही जॉब करदा या फिर मेरी जिहड़ी पिछली जॉब सी मैं वो ही अगली जॉब करन की कोशिश करदा कुछ लोग बिजनेस परिवारों तो आते हैं है ना या फिर एग्रीकल्चर परिवारों तो आते कि फिर जो जद्दी पुश्तैनी काम चलता पाया कि वो ही करते रहना हो सकता थोड़ी फिनेस थोड़ा टैलेंट थोड़ा एक्साइटमेंट लैवल भी शायद किसी होर काम के अंदर ज़्यादा उभर के आंदा होवे शायद तुसी किसी होर काम के अंदर फील करते होवो कि आई कुड डू मच बैटर बट जस्ट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ वाइल क्योंकि मैं करता आ रहा इन्ने टाइम तो तब मैं अपने आप नू रोक नहीं पाता अच्छा सेम वैसे सेम चीज़ जे आपां छुटमुट गल नाल कर लीए तो इंडियन टीवी इंडस्ट्री भी इहदे ते ही चल रही है किन्ने सीरीयल्स ने वो अज तक इस करके चल रहे हैं क्योंकि सानू आदत है सानू पता है कि यार वो 10 बजे फलान चैनल ते एक बीबी ने आके रोना ते असी सारे ने उन्हों अद्धा घंटा वेखना इस करके आप शो वेखते रहने सानू एक टाइम तो बाद डिसअपॉइंटमेंट होंगी है कि यार ये स्टोरी लाइन भी कुछ नहीं है ना कि ये की बकवास बनाई जाते पे की कड़ी को ली जाते पे है पर फिर भी आप रुकते नहीं है क्योंकि असी आदत पाली हुई है सानू होंगे कि यार ये मैं 1000 एपीसोड वेख चुका मैं पिछले 3 साल तो ये चीज़ देख रहा हूँ यदा एंड तो मैं वेखूंगा ही जबकि आई नो इट इज़ नॉट वर्थ माई टाइम सीक्वल फिल्मों के कि फिल्म का सीक्वल है जो थानू वधिया लगा हो भाई मैं धुरंधर तो बाद धुरंधर 2 देखी आई वुड स्टिल से कि ठीक ठाक ही सी इन्नी वधिया नहीं सी पर कई सीक्वल तो बहुत ही माड़े आते हैं है ना तो अजकल तो सीक्वल्स नू मिल्क करन दा कि उन्हां तो जिन्नी कमाई निचोड़ी जा सके उहदा भी बहुत ज़्यादा सिस्टम हैगा सो ये चीज़ों के अंदर भी अपने काफ़ी ज़्यादा आप टाइम बर्बाद करते हैं होर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हो गई है ना कि खासकर शेयरस के अंदर जिन्हें भी साढ़े वीर भैन भरा मैं देखा शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं देर इज़ अ कंसैप्ट कॉल्ड स्टॉप लॉस कि हमेशा पहले एक स्टॉप लॉस बुक करो शेयर खरीदन लगे कि इदा नहीं फायदा हों कोई कि कई बार की होंगे आप पैसे लगा लें तो अज डाउन होया कल थोड़ा होर डाउन होया की करते हैं असी होर डाउन होए तो होर खरीद लें कि एवरेज सैट हो जाएगी आप लॉस मेकिंग उपर होर लॉस मेक करते रहने कि शायद पैसे बच जाए क्यों क्योंकि मैं पहले लाए थे ना तो अज इस तरह नहीं होना चाहिए सो ये है जी छोटे मोटे
ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਕਰਾ ਲਿਆ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰੇ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂੰਗਾ ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਵੈਨ ਟੂ ਸਟੋਪ ਵੇਅਰ ਟੂ ਸਟੋਪ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਪੇਜ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ

Comment vague fakira, vague me fakira, vague me fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई इन्हें रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिदा मतलब हुंदा कि आप किसी रिलेशनशिप, जगह, लोग, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारिया चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे थे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ के अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह का असी दे रहे हो उस तरह का वह भी नहीं मिलना. कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने क्यों, क्योंकि साडे माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वह दोबारा दोबारा करते रहना है ना. तो जी हूँ आप अगे इस सिलसिले को वधावे, तो आप हूँ अगे गलबात यह करा कि भाई ये जी कंसैप्ट है, जोड़ा भी कंसैप्ट लिया साढ़े आह ओहायो च रहन वाले अपना बंदिया ने आर्कस एंड ब्लूमर ने, उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिद तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट जी. वो अंदर उन्होंने की किया, उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप में क्या जी कि यह ना अज इस सीजन के टिकट्स है $15 दियाँ मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसी पांच शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नू $13 दी दित्ती हो टिकट, दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट है ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना $15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ, कहिंदे ठीक है भाई. फिर बाद जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सीगा जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी नू उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले नू दिता 15, दूसरे नू 13, तीसरे नू 8, इन्हां नू इन्ने इन्ने दियां टिकटां वेचियां सेम नंबर ऑफ शोज़ एको थिएटर दे अंदर देखने लिए वक्खो वक्खरी फिल्मां दे. जवाब की आया जी, जवाब यह आया कि जिहड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटां खरीदियां उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे क्योंकि देवर लाए कि असी बहुत पैसा खर्चिया है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मनिया जदों उन्होंने दसिया कि हूँ ये सारी बोरिंग फिल्मां ने, ये फॉरन लैंग्वेज दी फिल्मां, असी तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी है ना. तो वो लोग कहें कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित होंगे कि क्योंकि मेरे पैसे वध लगे मैं शायद अपनी लाइफ के कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देव, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे है. जे उस ही चीज़ में पैसे घट दिते होंगे है ना, तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देव. इधर एक होर कंसैप्ट आता ओपरचुनिटी कॉस्ट कहते हैं. जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, जो लोग आई एम प्रीटी मच श्योर इफ दे आर वर्किंग इन रियल एस्टेट और मॉर्गेज ब्रोकर ने या फिर इन इंश्योरेंस, दे वुड बी यूजिंग दैट टर्म अलॉट, क्योंकि वह पॉइंट ही यह होंगे कि किसी चीज़ को छड्डन की कॉस्ट कई बार बैटर होंगी है नुकसान नालों. कि मैं पता कि मैं करता रहा तो 10 रुपए का नुकसान है, पर जो मैं नहीं करांगा तो शायद नुकसान जड़ा वो घट है, तो बैटर यह है कि मैं घट नुकसान चक लवा. नुकसान तो होना ही है दोनों केसिस. सो ये चीज़ा माइंड च रखनिया चाहिए, सही कि नहीं. अच्छा फिर दूसरे पास जो तुम देख लो उन्होंने एक होर क्या एक्सपेरीमेंट, यह है जी स्टडी टू, यदा नाम यह है जी द हाफ ईटन मील स्टडी, ठीक है. रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने एक्सपेंसिव खाना दिता, ठीक है. तो एक नू कहता जी खाना 2000 का, एक नू कहता जी खाना 200 का, ठीक है. सेम फूड एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड फूड, पुअर टेस्टिंग फूड सिगा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਰੋਏ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ $2000 ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਊਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੋਸ ਐਵਰਜਨ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੀ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 13 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣੋ।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: और जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वालियो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन डॉट

हाँ जी स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी 1674 ये नहीं है कत्तर बत्तर, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

तो कहिंदा सी हुण लै के जाना पैना। उस नौजवान नूं लै के जंगलां दी राह हो तुरिया। उसनूं लगदा सी कि एक दो दिन तक भुखा त्याया अक के वापस मुड़ जूगा। राह च जाके जिथे बैठे नौजवान पुछता, बाबा जी किन्ना क टाइम लगना? उसने जान बुझ के काफ़ी लम्मा समा दस्या। रस्ते दे विच काफ़ी औकड़ां दसियां, पहाड़ भी आने ने, नदियां भी तरनिया पैनिया ने, जंगल भी आने ने, खूंखार जानवर भी हले आने ने, कई जगह ते कई तरह का तलिस्म भी आऊगा। जो भी जिन्ना भी औखा दस सकता सी उन्ना उस राह नूं औखियां करके दस्या। ते नौजवान घंटा पहले फकीर नालों उठ के कहने लगा, उठो फकीर जी चलिए। जिथे फकीर नूं लगता सी कि वह नौजवान नूं गद्दी गेड़े पाऊगा, फकीर नूं खुद महसूस होने लग पाया कि वह किहड़े गद्दी गेड़े पै गया। जदों शाम नूं फकीर रुकण दे लई कहिंदा, नौजवान कहिंदा थोड़ा होर चल लैने, थोड़ा सफर होर मुका लैने। फकीर ने बथेरी खजल खराबी नौजवान की करवानी चाहिए। उन्हां रावां ते भी लई फिरदा रहा जिन्हां रावां दे बारे कोई जानकारी उन्हूं खुद नूं नहीं सी। ते अगला राह आउण वाला होर भी औखा दस के नौजवान नूं डराउण की कोशिश करदा, पर नौजवान इरादियां दे उत्ते दृढ़ सी। इसे तरह दे नाल कई दिन कई रातां चलते रहे दोवें, पर नौजवान का इरादा होर भी पक्का होंदा गया। फकीरा रब किड्डी क दूर है, फकीर जी किन्नी क छेती मिला सकते हो? जे कहो तो आपां होर तेज चलीए, जे कहो तो आपां रातां नूं रुकिया ना करिए। जदों फकीर नूं इस चीज़ का यकीन हो गया कि इन्हें खैड़ा नहीं छड़ना, एक जगह ते जाके फकीर नूं इत्थों तक महसूस हो गया कि हुण उहनूं पिछे दा राह भी नहीं याद रहा। अगे पता नहीं कित्थे जाना, पिछे दा राह भुल गया। फकीर बौंदले ने आखिरकार नौजवान दे पैरां ते डिगना ज़्यादा बेहतर समझे। पैरां ते डिग के माफ़ी मंगी, कहन लगा, मैनू नहीं पता रब कित्थे, मैं नहीं जानदा रब नूं, मैनू नहीं सी पता, तू तो मेरे नालों भी वड्डा भगत निकलिया, तेरा मैनू पता नहीं, पर मैनू मेरा रब मिल गया। जे तेरे च इन्नी श्रद्धा वा, इन्नी नेचा वा, ते अज तो तू मेरा गुरु। सच पुछे ते मैं गुरु अखवाउण दे काबिल नहीं हां, मैं जो भी किया अपना ढिड भरन दे लई किया। जे मैनू रब लभा हुंदा ते मैं भला इदां धक्के खांदा फिरदा? उल्टा तू मैनू अपने चरणा च रख ला, जे कि रब मिले तो मैनू जरूर दसी। खलील जिब्रान की लिखी हुई है कहानी, अनुवाद करदे हां, कोई उत्ते थले हो गया होवे तो उहदे लई माफ़ी, पर कहानी का जो मकसद है वह जरूर तुसीं समझे होगे। जेकर नहीं तो अज के अजोके समय के नाल जोड़ के जरूर समझ आओगे। अज के समय के विच बड़े बाबे, बड़े फकीर, बड़े ढोंगी सब अपने अपने तरीकों के नाल दावे करते हैं, वो तुहानू दसणगे, वो तुहानू मिलाउणगे। सच जाने हो तो जदों आपां इन्हां दे कोल जाने हैं ना, कितें भी किसी भी जगह तुसीं नेचा रखते हो, वह तुसीं आप सियाणे। तो उन्हां सारिया ने मापदंड ही कुछ ऐसे रखे ने कि उल्टा केस तुहाडे सिर पा देंदे। किसी नूं कोई दुख तकलीफ है, तुसीं किसी बाबे दे जांदे हो तो वह शर्ती तुहानूं एड्डी क वड्डी दसूगा जिहड़ी तुसीं पूरी ना कर सको। वह तुहानूं पाठ ही इन्ने दस दू
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ओए सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: Attention, commission on adventure now.

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हां जी 1674 AM।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: कै जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक कुन संग मोहे उधारू
1: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हरंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाही जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै सी सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरै सी पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंध न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभ कै सिमरन कारज पूरै प्रभ कै सिमरन कबु न जूरै
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कुर पर मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परमगत पाईऐ
1: छूटत नाही को लखबाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्म मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हो मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईऐ साधु कै संग
0: जे मार के गन जाहे न कूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महाअंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोग्राम तिहार के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ करख है तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कर सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ न है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगटनी छपै
1: हर की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुलका छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਵਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਸ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਝੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰ ਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿੰਨੀ ਮਾਨੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆ ਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾ ਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋਂ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਓ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਥਾਓ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। सिमर

0: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उस पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत, ओम शांति। शिवानी जी, अभी तक हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट हमारा, एक जो एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है।
1: हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा,
0: एक पूरा
1: आपने वर्क किया, आपने देखा उस
0: बिल्कुल
1: प्रोसेस
0: को। मैं उसी पे आ रही थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुंची, अपने काम पे पहुंची और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफर कहीं अटक गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ,
1: फीलिंग से एटीट्यूड बनता है,
0: हाँ, एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना।
1: सी, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहे, तो वो तो फिर बहुत यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओ दिस इज माय थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग, दिस इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स की पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज अ प्रोसेस, यू नो, जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहां हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आए तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहां करना।
0: ओके, और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं,
1: कर भी नॉट रियली। हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है, एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है, जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल।
0: जैसे आर्ट जनरेटिंग,
1: हाँ, जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना, कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया सब कुछ पढ़ लिया। ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाले हैं। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ। सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया, आई एम अ लिटिल केयरफुल। अगर आप आए और आप मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फलां व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहां वहां इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ, आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूं ये अंदर जा रही है, ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करे।
0: इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी कि सही सुनना चाहिए, सही बात कहनी चाहिए, क्योंकि दैट रियली मैटर्स। नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट रियली अफेक्ट्स अस।
1: आप देखो, पहले जो हम चीजें करते थे ना, दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल। पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या कुछ भी, हर एक के लिए जो भी था कोई अच्छी चीज हम पढ़ते थे या सुनते थे। तो इट वॉज साइंटिफिक ना, कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन।
0: और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट लाइक हम सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह।
1: अभी हम क्या करते हैं, सुबह उठकर एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविजन चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है। So the foundation of the day itself is on a different note. तो फिर उसके ऊपर expect करना कि positive thoughts generate हो, we are looking for the impossible. हमने वो अंदर information भरी ही नहीं। तो हमारी information जो हम भरते हैं और हमारे belief systems।
0: जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी, कि अगर एक thought जो हमारा

0: बात टेंशन की करते हैं क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है, यू नो टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन
1: है। टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है।
0: यस,
1: टेंशन होनी ही चाहिए, यू नो टेंशन तो हर एक को है। अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग यू नो
0: टेंशन नहीं है,
1: कि दैट इज अबनॉर्मल। तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है? है ही हर एक को, तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है।
0: अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम?
1: एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना। आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है, आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हमें अपने बारे में ही पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है बड़ी, वो बार बार उसको और होनी ही चाहिए। तो इट्स कंसिडर्ड लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन, यू नो जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं। अगर आप टेंशन के बिना बैठे अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज,
0: आपको कोई टेंशन नहीं है। यू नो लाइक ऑफकोर्स
1: मे बी यू आर गुड फॉर नथिंग, मे बी यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट इन लाइफ, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है।
0: अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है कुछ, यू नो कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंग्जाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे।
1: अच्छा परफॉर्म जो सबसे पहला रॉन्ग, मतलब रॉन्ग कहें या जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो है कि टेंशन नेचुरल है। यू नो किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है। टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है, टेंशन नॉर्मल है। नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस, कि डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है?
0: नो आई डोंट थिंक सो,
1: बिकॉज वी एक्सेप्ट इट एज द मोस्ट कॉमन थिंग।
0: नो बट इफ आई थिंक, नो वी एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स देयर,
1: राइट?
0: लाइक वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, बट इफ वी रियली थिंक अबाउट इट, अगर मैं आज बैठ के आपने मुझे कहा पॉज दिया, मैंने सोचा कि इट शुड नॉट बी नेचुरल,
1: वो क्या हो जाता है, जैसे एक एपिडेमिक नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट यू नो फिजिकल हेल्थ है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज, या मेजोरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है, इट इज अननेचुरल। और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देती। जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, यू नो तो इमीडिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, यू नो एंड द होल एनवायरमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन।
0: बस छूट गई बच्चे की, एग्जाम है क्या होगा,
1: ट्रैफिक जाम में अटक गए,
0: बिल्कुल,
1: यू नो बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है, एंड देन गोइंग टू bigger issues, whether it is career or
0: तो ये tensions है।
1: हाँ, मेरा जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो now you will have to check to create a belief कि ये natural है या नहीं है natural। natural वो चीज होगी जो comfortable feel होती है। you know, natural means what? जैसे चलना natural है, भागना
0: unnatural है।
1: नेचुरल इज वॉकिंग, या तो क्या करेंगे, आप चल सकते हैं ज्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें, आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड, एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है, हाउ आर वी फीलिंग, दर्द है कहीं ना कहीं, एक आंतरिक दर्द है, और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी न किसी रूप में निकल कर आती है, गुस्से में या चिड़चिड़ापन में।
0: Definitely.
1: तो उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कंफर्टेबल, आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कंफर्टेबल। अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज, आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माई नेचुरल।
0: व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है, ये हमें नहीं मानना है, दिस इज
1: रॉन्ग। क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है, तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं करेंगे। अब देखो, आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे, सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 point something, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो, सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत दवाई ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है, दैट नॉलेज इज देयर। अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है, तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे। कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है, तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे। 100 जैसे ही क्रॉस हो गया, आप क्रोसिन लेंगे.
0: वन
1: यू सी यू हैव टू

0: know what is normal.
1: So
0: I
1: have
0: that knowledge.
1: Whole process we have actually taken it ki tension
0: normal hai. Ab thoda sa aapko bukhar ho jaye aap Crocin lete hain. Kyun? Rehne dijiye na, kal tak theek ho hi jayega. Nahi, mujhe theek hona hai kyunki kal you know I have to get back to work. Ab tension hai, badh rahi hai, day by day it's getting. Lekin hum uske liye koi treatment nahi le rahe. Kyun? Kyunki humne se yahi natural hai. तो उसको जब नेचुरल के पैरामीटर पर ले आए तो एक्सेप्टेंस हो गई कि ये तो नेचुरल है.
1: अच्छा उससे दिस इज रॉन्ग बिलीफ एंड देन द थॉट क्रिएट.
0: या तो टेंशन. अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी बिलीफ को चेक किया एंड आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दिस इज अननेचुरल, दिस इज अनकंफर्टेबल, दिस इज कॉजिंग पेन, आई डोंट वॉन्ट इट.
2: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई. एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने.
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा.
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यू आर लिसनिंग
4: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी
1: हांजी हांजी हांजी ओए हांजी हांजी हांजी रेडियो
2: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं दिन थोड़ा वधिया जा रहा होएगा, चढ़ती कला च होगे समा हो चुका अज की कहानी का। अज की कहानी ओशो दियां कहानियां जो तुहाडे नाल सांझी करन लगे। कहिंदे ने एक वारी एक चक्रवर्ती राजा जिहड़ा मरन तों बाद सुमेर पर्वत दे उत्ते दस्तखत करन दे लई जा रहा है। कहानी है कि सब तो पहला चक्रवर्ती राजा जान लेना बहुत जरूरी है। कहिंदे चक्रवर्ती राजा ओह हुंदा जिन्हें चारे दिशावां जित लईआं होण, जिन्हें सारे दे सारे महादीप दे उत्ते राज कीता होवे। ते ये कोई आसान नहीं है, कोई एक पासे राज कर ले गल मनी, दो पासे कर ले, पर सारे महादीपां दे उत्ते राज करना ये कोई सौखा नहीं है। इस करके कोई विरला ही चक्रवर्ती राजा बनता। पर इस राजे नूं सुभाग प्राप्त होया ते ये हुण सुमेर पर्बत दे उत्ते जाके दस्तखत करूगा। सुमेर पर्बत की है, जैन धर्म दे विच मन्निया जांदा कि मरन तों बाद जदों तुसीं स्वर्गां दे विच जांदे हो, अगले घर तुसीं जांदे हो, तो उत्थे एक बहुत वड्डा एक विशाल पर्बत है। खासियत यह है कि कदी भी विनाश ना होने वाला, कदी भी खत्म ना होने वाला, हमेशा सदीवे जीउंदे रहने वाला पर्बत है। बाकी पर्बत कहिंदे ने कि जमदे मरदे ने, धरती दे उत्ते जिन्ने भी पर्बत ने वो कोई जवान है, कोई बुढ़ा हो चुका ते कोई मर चुका। जिदा हिमालय बारे कहा जाता कि यह हुण जवानी दे उत्ते हर साल एक फुट वध जांदा। पर यह सुमेर पर्बत जिहड़ा वा इस दीव आ, सो राजे नूं बड़ा माण आ कि हुण मैं जाऊँगा तो जाके उत्थे दस्तखत करूँगा। इस करके मरन की भी काल आ कि मरन तो बाद एक होर मैं वड्डी अचीवमेंट, वड्डी एक उपलब्धि प्राप्त करनी है इस दुनिया दे विच जिहड़ी होर किसी ने कदी प्राप्त नहीं की। ते जदों जाण लगा वजीर दे नाल इह सब सांझा करदा ते उहदा वजीर हसदा, पुछदा तू क्यों हसिया। कहन लगा राजन जदों तुसीं सुमेर पर्बत ते पहुँचोगे उदों मेरे हासे दी रमज समझ जाओगे। बस इन्ना कह के टाला कीता ते राजा तुर पिया अपने सफर दे उत्ते। हुण राजा जदों सुमेर पर्बत दे द्वारां दे उत्ते पहुंचा ते उत्थे जिहड़े बाहर सिक्योरिटी लगी आ उहने रोकिया। द्वारपाल ने कहा राजा तू कल्ला ते जा सकदा, असूल दे मुताबिक तेरा परिवार, तेरे यार दोस्त, तेरे बच्चे नहीं जा सकदे। क्योंकि कहिंदे ने राजा जदों मरन लगा ते नाल उहने बाकियां नूं भी मार लिया। क्योंकि जदों कोई वड्डी कामयाबी तुसीं प्राप्त करदे हो ते फिर उत्थे तुहाडे अपने वेखण लई भी चाहीदे ने। उत्थे कल्ले ने कामयाबी की करनी है, कल्ला ते जिथे मर्जी बंदा जाके दस्तखत कर लवे, जिहड़ी मर्जी अचीवमेंट कर लवे, किसे नूं कोई लैणा देणा नहीं। असल विच साडियां अचीवमेंट्स हुंदियां वी इसे करके ने कि उत्थे चार बंदे वेखण वाले होण। सो कहिंदे ने परिवार भी नाले लै गया, कुछ करीबी यार दोस्त भी लै गया। उन्हां सारिआं नूं द्वारपाल ने रोक दिता, कहण लगा राजन जे तू जाणा ते कल्ला जा सकदा, ये तेरे नाल नहीं जा सकदे, ये साडा असूल है, ये साडे रूल है। ते कहिंदे ने इत्थे द्वारपाल भी हस्सिआ सी जदों इह सारे परिवार नूं नाल वेख्या ते द्वारपाल दा भी हासा निकलिआ सी, बिल्कुल उसे तरह जिद्दां दा वजीर दा निकलिआ सी। ते जवाब उहने भी दिता राजे दे पुछण दे उत्ते कि जदों तूं अंदर जाएगा, जदों तू अंदर दस्तखत करन लगेगा तो तेनू समझ आजूगी मैं क्यों हस्या। हुण राजे दे लई इह दोवें पहेलियां ने। राजा अंदर जांदा, पर्बत वल वेखदा ते हैरान हो जांदा, हैरान ते हुंदा ही हुंदा, नाल उहनू वजीर दे हासे दी ते द्वारपाल दे हासे दी रमज भी समझ आ जांदी है कि आखिरकार उह क्यों हसे सी। सी ते राजा ना, सी ते बुद्धिमान, पर गल इह सी कि हुण उहदे दिमाग दे उत्ते कुछ होर हावी सी, ये उपलब्धि हावी सी उहदे दिमाग दे उत्ते। चार छफेरे मत्था मार के दस्तखत कीते तो बिना ही राजा वापस आया, द्वारपाल नूं पुछदा इस पर्वत दे उत्ते मैं दस्तखत कित्थे करां। ते द्वारपाल फिर खिड़खड़ा के हसदा, राजे ने जिहड़े थोड़े शैणियां तों लैके आया सी की गल कितें वी चलाउण दे लई जगह नहीं लभी। असल दे विच होया इस तरह कि इन्ने विशाल पर्वत दे उत्ते कितें जगह ही नहीं सी बची जिथे वह दस्तखत कर सकता होवे। राजा मन दे विच सोचदा सी कि जदों मैं द्वार दे विचों अंदर एंटर होना ते सामने बिल्कुल वड्डे वड्डे अक्षरां दे विच मैं अपने दस्तखत करूँगा, अपना नाम लिखूँगा ताकि कल नूं जेकर कोई आउण वाला, अबल ते किसे ने आउणा नहीं, इन्ना औखा कोई एवें बन जूगा, चक्रवर्ती राजा बनना कितें आसान है। ते जे कोई आ भी गया ते सब तो पहला मेरा नाम उहदे मत्थे लगूगा। पर हैरान हुंदा कि पर्वत दे सज्जे खब्बे उत्ते थले चप्पा चप्पा पोटा पोटा हर एक थां उहने चैक कर मारी, पर किसे भी जगह दे उत्ते इन्नी भी थां नहीं मिली कि वह अपने नाँ का एक अखर ही पा दिंदा। पूरा नाँ दस्तखत तो बड़ी दूर की गल, यानी कि इन्ने उस तो पहला भी हो के जा चुके सी। राजे ने आके अर्ज की द्वारपाल दे अगे, मैं की कर सकदा, उत्थे ते जगह ही नहीं बची। ते द्वारपाल कहन लगा, मैं ये नौकरी अपने प्यो तो अगे की है, साडा जद्दी पुश्ती काम है, इत्थे इसे द्वार दे उत्ते नौकरी की आपां। ते मेरा प्यो भी दसदा हुंदा सी कि उस समय तो भी इहो ही हालात चल रहे ने, ते शायद मेरा दादा भी इहो ही हालात वेख के गया। राजा तैनू की लगता है तू कला चक्रवर्ती, तू वेख के कदों तो लैके ये सिलसिला चल रहा, तू कला नहीं। पर हुण जिहड़े मैं आ थोड़े शैणियां लैके आया इन्हां दा की करां, मैं फिर अपना नाम कित्थे लिखां। ते द्वारपाल फिर हस के कहण लगा, जिहड़े पहलियां ने लिखे ने वह किसी ना किसी का बुझा दे, ते अपना लिख ला जिथे तेरा जी करदा पहले का बुझा दे। ते कहिंदे ने राजे दे हत्थों थोड़ियां शैणियां उत्थे छुट गईयां परिवार दे सामने। द्वारपाल कहण लगा, की गल राजा, अपने दस्तखत नहीं करेगा? राजे ने कहा, नहीं, जदों अज मैं किसी दे दस्तखत मिटा के अपने कर दूंगा ते कल नूं अगला आउण वाला मेरे मिटा के फिर अपने उत्ते कर दूंगा, फिर बचिया की? फिर ते मैं अपने मन नूं तसली देण वाली गल। कहानी है राजे दी, कहानी सुमेर पर्वत दी। वो राजा जिन्हों लगता है कि मैं दुनिया के उत्ते सिर्फ इकलौता, ये सारे महादीप कोई नहीं जित सकता, सिर्फ मैं जिते ने, ते दुनिया के उत्ते मैं ही वो कार्ज किया, ते मेरे तो अलावा होर कोई अगला पिछला कोई नहीं कर सकता। इसे तरह का शायद हर एक इंसान सोचता, मैं तुसी सारे सुनने वाले, ते जिहड़े नहीं भी सुन रहे इस टाइम, जिहड़े अगे सुनणगे, कला कला इंसान कहिंदे दुनिया का इहो ही सोचता कि जो उन्हें कर दिता वा, जो उहदियां उपलब्धियां ने, वह शायद होर कोई नहीं कर सकता। पर दुनिया भली सो भली, यह जग कदी किसी ने नहीं जितया। जिहड़ी चीज़ दे उत्ते, जिहड़ी अचीवमेंट दे उत्ते अज तुहानूं माण हो रहा, याद रहे कि उस तो वड्डियां वड्डियां मल्लां पहलां बड़िया ने मार लईआं ने। इहदा कोई अंत नहीं, किसी पासे नूं कोई अंत नहीं। जिहड़े पर्वत दे उत्ते तुसीं अपना नाम कल्ले दर्ज करना चाह रहे हो, इस दुनिया दे विच जिहड़ी तुसीं अपनी छाप छड्डन दी गल करदे हो अपनियां वड्डियां उपलब्धियां दे नाल, उस तो पहलां पता नहीं किन्निआं किन्ने ओह मारका मार लिया। सो इस करके माण किसी चीज़ का नहीं, हंकार किसी चीज़ का नहीं। एक कहानी सानू इहो ही दसदी है कि तुसीं बड़ियां दे विच्चों एक हो, बहुत सारियां दे विच्चों एक हो, अनेकां दे विच्चों एक हो, तुसीं कल्ले नहीं इकलौते नहीं जिन्हां ने कोई ये वड्डा मारका मारिया होवे। सो इस करके जो भी तुसीं इस टाइम दे उत्ते महसूस करदे हो, जिहड़ी भी तुहाडी उपलब्धि है, ये उस रब की बख्शिश है, ये उस परमात्मा की देन है, सानू उहदा शुक्र अदा करना चाहिए, पल पल अदा करना चाहिए कि उन्हें सानू इस दुनिया के विच माण बख्शिया। जो तो जिन्ने भी लोग तुहाडे आस पास ने, तुहाडा परिवार, तुहाडे दोस्त, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਓਸ਼ੋ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।

0: शेरनेक्सस।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं हूं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अचीवर 106.8।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज इमरान हाशमी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो हाजी

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
2: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming to cinemas on May 22nd.

0: अवे सिडनी वालियों, तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM। रेडियो
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।